ये आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रवण माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए करें इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन

0: पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है अर्चना का, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस मात्र वंदना के साथ।

0: चरणदास लिखित इस भजन के साथ ही आज की अर्चना कार्यक्रम को अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। आपको बताना चाहेंगे 6:30 पर आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनेंगे। कुछ पुराने फिल्मी गीतों की सौगात होगी। फूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 6:40 पर कार्यक्रम सुबह 7:00 और 7:05 पर आप सुनेंगे कृषि संकेत मन चाहेगी। सुबह ये कार्यक्रम आप 7:20 पर सुन सकते हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम रात्रि 9:00 भी हमारे श्रोता सुनेंगे। संगीत सरिता लेकर आएंगे सुबह 7:45 पर, रात्रि 8:20 पर और शाम 5:30 पर। सुबह 8:15 पर आप लोक संगीत का आनंद लेंगे। बिंदिया कार्यक्रम 8:30 पर होगा। प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार सुनिएगा सुबह 9:50 पर। 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर श्रोता फोन करें लोक गीत सुने कार्यक्रम सुनेंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा सुबह 11:00।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
4: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11:00 से 11:30 तक।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सदाबहार

गीत सुन सकते हैं। लोक रंग कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:45 पर। ग्राम सभा श्रोता सुनेंगे शाम 7:20 पर। रात्रि 8:00 आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे रिकॉर्डिंग होगी कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने की। जी हाँ, समय आज शाम 4 बजे, और हमारा फोन नंबर है 240-845, सागर का एसटीडी कोड 0-75-82। तो हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल का।

अभी श्रोता कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज आप इसकी 82वीं कड़ी सुनेंगे, जिसमें मुख्य गायक स्वर उत्तरा केलकर और उषा मंगेशकर के हैं। आइए सुनते हैं।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आज आपने इसकी 82वीं कड़ी सुनी, जिसमें मुख्य गायक स्वर उत्तरा केलकर और उषा मंगेशकर के थे। FM पर ये आकाशवाणी सागर है। 6:40 हुए हैं। आइए सुने कुछ पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। जल बिन मछली नृत्य बिन बिचली, इस फिल्म से ही गाना जिसे लता जी ने गाया, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया, और ये गीत लेकर आए हम आपके लिए।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: छलिया, यह है फिल्म का नाम जिससे अगला गाना आप सुनेंगे लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। कमर जलालाबादी ने गीत को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया।

हरी कांच की चूड़ियां। इस फिल्म से ये शीर्षक गीत आइए सुनते हैं। आशा भोसले ने गीत को गाया है, शैलेंद्र ने लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया है।

अभी श्रोता भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में चंद पुराने फिल्मी गीत सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आज शाम 4 बजे फोन करें, लोकगीत सुने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। आप हमें फोन लगा सकते हैं 240-845 पर। जी हाँ, इस फोन नंबर के लिए एसटीडी कोड 075582। आज शाम 4 बजे फोन करें, लोकगीत सुने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। अब से थोड़ी ही देर बाद श्रोता सुनेंगे संस्कृत में समाचार, अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

कोकापुरात अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनात अनुवर्त्यन्ते। यासाम विमान संकेतः VTZ इति पूर्ववत एव स्थास्यति।

0: इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां सम्भूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य नवमे दिनांके आंग्ल वाणिज्ययोः तथा सितंबर मासस्य दशमे दिनांके समाजशास्त्रस्य पुनः परीक्षा भविष्यति। विशुद्धानां निष्पक्षाञ्च परीक्षां विधातुम् एषः निर्णयः समिति अनुशंसया गृहीतः। भारतं श्वः नवदिल्ल्यां द्वादशं ब्रिक्स ऋतुदशा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। इतः प्राक् अद्य ऋतुदशा कार्यसमूहस्य जलवायुपरिवर्तनस्य सुस्थिरविकासस्य विषये सम्पर्कसमूहस्य च ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारिणां सभा भविष्यति। 26,000 भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षपदस्य विषयः स्थितिस्थापकतायाः नवान्वेषणस्य सहकारस्य सुस्थिरतायाः च निर्माणम् इत्यस्ति। भारतम् अद्यारभ्य अगस्तमासस्य 23rd दिनाङ्कं यावत् नवदिल्लीनगरे स्थिते इन्दिरागान्धी स्टेडियम् इति स्थाने BWF विश्व चैंपियनशिप स्पर्धाम् आयोजयिष्यति। 2000 स्पर्धायाः अनन्तरमिदं द्वितीयवारं यदा भारतदेशः एतां स्पर्धाम् आयोजयति। FIH पुरुष हॉकी विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम् अद्य स्वस्य विजय यात्रां निरन्तरं कर्तुं इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी सागर है।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी।
1: श्रोताओं, अब समय हो रहा है कार्यक्रम सुबह सुबह का। हम अपनी चर्चा आरंभ करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आज सुबह सुबह कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा, और आज बात होगी आत्म संतोष की।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अक्सर हमने सुना है कि जीवन में आत्मसंतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, किंतु वास्तव में आत्मसंतोष है क्या? क्या आत्मसंतोष जीवन में जो उपलब्ध है उसी में खुश होना है, या हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और हमारी दृष्टि में हमारी सफलता है? श्रोताओं, हम अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को किसी सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारी इच्छाएं और सीमाएं केवल हमारी नहीं होती, हमारे परिवेश से जुड़ी होती हैं। जीवन में आत्मसंतोष किसी एक कार्य से नहीं मिलता, प्रतिदिन और बार बार किए जाने वाले कार्यों से मिलता रहता है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है। संतोष की अंतिम स्थिति हमारे जीवन में संभव ही नहीं है। कभी हम किसी की सहायता करने से खुश हो जाते हैं, उसमें हमें संतोष मिलता है। कभी कोई हमसे खुश होता है तो हमें संतोष मिलता है। ऐसी असंख्य चीजें हैं जिनसे हमें संतोष मिलता है। इसलिए आत्मसंतोष कोई एक कार्य तक सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि हम सामाजिक पारिवारिक प्राणी हैं और आत्मसंतोष के लिए प्रतिदिन हम कोशिश करते ही रहते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि किसी के भी जीवन में आत्मसंतोष जीवन की चरम प्राप्ति नहीं है। यह हमारे कार्यों हमारे व्यवहार से

0: जा हुआ एक भाव है जिसकी प्राप्ति के लिए हम हर समय प्रयासरत रहते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें जिनसे हमें संतुष्टि मिलती हो, अन्यथा कार्य हमें भार लगने लगेंगे और यह हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। इससे हमारी जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। यदि कार्य को हम शौक से करेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति भी होगी और हम सफल भी आसानी से होंगे और हम अपने कार्य से संतुष्ट भी रहेंगे। आज सुबह सुबह बस इतना ही। अनुमति दीजिए साहिबा को इस कार्यक्रम से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कृषि संकेत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के कृषि संकेत के अंक में बात होगी फसलों में दो प्रकार की इल्लियों का एक साथ नियंत्रण कैसे हो। विशेषज्ञ रहेंगे अंकित रावत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: किसान भाइयों को ये सलाह रहेगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो रकबा ज्यादा है वो सोयाबीन उड़द का ज्यादा रहता है, इनमें इल्लियों से समस्या भी आती है, क्योंकि जो आपका सोयाबीन या उड़द का जो पौधा रहता है जिस हिसाब से उसकी पत्तियां रहती है उनको अच्छा लगता है खाना, बड़े चाव से वो खाते हैं, इन फसलों में इल्लियों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। एक मिलेगी आपको ऐसी इल्ली जो आपकी केवल फसल की पत्ती का रस चूसते रहेगी, उसको हम कहते हैं साधारण भाषाओं में रस चूसक। दूसरा कीट अपना आ गया इल्ली वाली प्रवृत्ति में, जो कीटों का नेचर रहता है, तो इल्ली कुतर के नुकसान पहुंचाती पत्तियों को, और जो रस चूसक कीट रहते हैं वो हमारी फसलों की पत्तियों का रस चूस के उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जहां जहां पे आपके सोयाबीन उड़दा की खेती होती है, लगभग लगभग सारे क्षेत्रों में आपका जो पीला रोग एक आम रोग है, हर किसान भाई उस रोग के बारे में भली भांति जानता है, सब अपने खेतों में देखते रहते हैं, लेकिन उसका हमारे किसान भाइयों का कारण नहीं पता रहता, उन्हें का पत्ती पीली पड़ गई वो उसको उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन वो रोग जो हमको दिखता है वो रोग होता है विषाणु से, और जो विषाणु फैलता है वो आपकी मक्खी से, सफेद मक्खी होती है चूसने वाली प्रवृत्ति वाले वो कीट रहता है। अब होता क्या है, उसने रस चूसा, जब पत्ती से रस चूसा तो जो आपका ग्रसित पौधा था जिसमें पीले रोग का अटैक हुआ है, तो उसने रस के साथ साथ रोग के विषाणु को भी चूस लिए। अब वो उसने रोग के विषाणु को चूसे दूसरे पौधे पे जाके बैठा, पहले तो हमारा एक पौधा ग्रसित था, देखते ही देखते वो मक्खी 10 पौधे पे जाके बैठी, तो धीरे धीरे करते करते देखते ही देखते जब हम पहले दिन देखा तो हमारा एक पौधा था, और वही अगर हम 4 दिन बाद जाके देख रहे हैं तो हमारा आधा खेत पीला, और उसी को हमने जब 1 हफ्ता बाद देखा तो पूरा खेत पीला। तो जब तक हम सोचे इसका नियंत्रण करें तब तक तो हमारा पूरा खेत ही पीला हो जाता है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध रहता है कि आप अपने खेत का नियमित भ्रमण करें, तो घूमने के बाद आपको आपके खेत में क्या समस्या आ रही वो दिखती रहेगी। अब जैसे मान लीजिए अपन ने बात करी ये पीला मोजक रोग होता है वो रस चूसक इल्ली से रहता है, तो इसका नियंत्रण कैसा करें, तो एक तो नियंत्रण हो गया कि जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनको आप उछकाओ, उछका के आप गाड़ दो माटी में ताकि वो वायरस वहीं के वहीं खत्म हो। लेकिन सफेद मक्खी खत्म हुई क्या, सफेद मक्खी तो वहीं की वहीं है, तो हमें सफेद मक्खी का नियंत्रण करना आवश्यक रहता है। जो आपका कीटनाशक रहते हैं, कीटनाशक की प्रवृत्ति होती सिस्टेमिक, सिस्टेमिक का मतलब यह है कि वो पौधे के किसी भी भाग में गिरा और गिरने के बाद पूरे पौधे में फैल गया, और जैसे ही वो आपका इल्ली ने आपके फसल में आई और उसने पत्थरी सक करेगी, उसके पश्चात वो मर जाएगी। अगर हमारे खेत में रस चूसक आपकी मक्खी का नियंत्रण हो गया तो येलो वेन मोज़ेक

0: करियंत्रण हो गया। ये तो बात हो गई रस चूसक इल्ली की। अब इसमें आती है दवाई हम कौन सी डालें। तो रस चूसक इल्ली के लिए हम हमारे किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं, वैसे तो आपके दुकानों में कई दवाइयां उपलब्ध हैं, जैसे आप रस चूसक बोलोगे वो आपको दुकानदार कई प्रकार की दवाई दे देगा। उसके पश्चात भी अगर हम बात करें तो इमिडाक्लोरपेट आती है 17.8 SL, इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाई इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रस चूसक इल्ली की नियंत्रण की बात आ गई। लेकिन अब काटवे वाली इल्ली दिखने लगी आपके खेत में, किसान भाई के पास इतना पैसा नहीं रहता है, क्योंकि समस्याएं रहती है कैसे तैसे करके वो खेती करता है, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग फील्ड में देखते रहते हैं। तो इल्ली नियंत्रण और मक्खी नियंत्रण दोनों दवाओं को मिला के भी हम स्प्रे कर सकते हैं। जिस भी हम प्रतिष्ठान से लेंगे उससे हम पूछ लेंगे तो वो बता देगा कि कौन सी दवा अगर हम एक रस चूसक मक्खी के लिए मिला रहे हैं और आपका इल्ली के लिए मिला रहे हैं, इससे हमारी फसल पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी दवा हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हम थायोमेथॉक्सेम प्लस लैम्डा, ये दो अलग अलग दवाएं हैं, इनको हम मिला सकते हैं। इनकी 80 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम स्प्रे करें तो, और ऐसी भी और भी बहुत सी दवाइयां आती है, जब आप दुकानदारों के पास जाओगे ऐसे कई कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जैसे कि बीटा सल्फिरॉन प्लस इमिडाक्लोपेट, इसकी 125 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत का ये अंक। अब से थोड़ी ही देर बाद श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, भोपाल को खेलों की राजधानी बनाने के लिए सरकार उठा रही है कदम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कल दी गई श्रद्धांजलि। इंदौर में प्रतिमा की आधारशिला रखी गई, भोपाल में हुआ प्रतिमा का अनावरण। नाग पंचमी पर उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खुले। और जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बीते कुछ सालों से भोपाल में खेल गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार भोपाल को खेलों की राजधानी बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कल राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप राष्ट्रीय रैंकिंग के तीसरे संस्करण के समापन पर चैंपियनशिप की विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल की टीम ने 20 मेडल हासिल कर पहला स्थान, नेवी यूथ स्पोर्ट्स कंपनी गोवा की टीम ने दूसरा स्थान और सिकंदराबाद सेलिंग क्लब सिकंदराबाद की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपनी कार्य पद्धति से आमजन में स्वीकार्यता प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी पद दे सकती है, पदाधिकारी बना सकती है, जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं, लेकिन नेता हमेशा जनता बनाती है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी की प्रेरणा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा इंदौर के दशहरा मैदान में लगाई जाएगी। कल उनकी पुण्यतिथि पर इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। इंदौर नगर निगम लगभग 1,97,00,000 रुपए की लागत से यह प्रतिमा बनवा रहा है। ये प्रतिमा गन मेटल से बनाई जाएगी और इसके लगभग 4 महीनों में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आधारशिला समारोह में कहा कि प्रतिमा न केवल एक स्मारक

0: होगी, बल्कि अटल जी के विचारों और मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी।
1: केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ और पार्वती कालीसिंध चंबल ये पूरी योजना से राजस्थान, जब मैं यहाँ अटल जी के नाम पर इस पथ का लोकार्पण कर रहे हैं तो एक और चार नंबर विधानसभा का 7 करोड़ की लागत से फूटी कोठी चौराहे से संत श्री सेवालाल ब्रिज का भी सर्विस रोड का भूमि पूजन हुआ।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य का विषय उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 से 30 जून तक आयोजित की थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल गए। वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले मंदिर में पट खुलने के बाद लगातार 24 घंटे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के साथ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद उन्होंने पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल और निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, यानी पानी की मुख्य टंकी से लेकर नल तक पानी के पूरे आपूर्ति के दौरान उसकी शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। पानी के पुराने और जर्जर भंडारण टैंकों को तेजी से बदलकर नए टैंक लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने जल स्रोतों और आउटलेट बिंदुओं पर नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता का परीक्षण अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि पुलिस प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं, अभिभावकों और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही युवा नशा मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल कल लोकभवन में पुलिस, नगर सेवा और नागरिक सुरक्षा के पदक प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने प्रदेश पुलिस के उन सभी कर्मवीरों का अभिनंदन किया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और विशिष्ट सेवाओं से मध्य प्रदेश पुलिस और प्रदेश का मान बढ़ाया है। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल है। भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में भी 18 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, वहीं इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हराकर मजबूत शुरुआत की थी। वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं महिला डबल्स में थ्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेगी। आयुष शेट्टी का सामना विश्व नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन चीन के शियू कुई से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में श्रावण मास के तृतीय सोमवार के अवसर पर आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली जाएगी। दमोह जिले में कल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर

पर नोटहा से लेकर दमोह तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। डिंडौरी जिले के बिलगांव बांध के कैचमेंट क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए आज सुबह 8 बजे बांध के दो गेट खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह कल आज से 2 दिवसीय आगरमालवा जिले के भ्रमण पर रहेंगे। शिवपुरी में युवा संगम कार्यक्रम 20 अगस्त को शासकीय LSG के महाविद्यालय पोहरी में आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय तवानगर ने स्वच्छ और हरित विद्यालय सर्वे में प्रदेश स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। भिंड जिले में 30 MP बटालियन NCC और महिला बाल विकास विभाग के समन्वय से CATC कैंप में सह प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचना पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। समय हुआ है मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके पसंदीदा नगमे आप तक पहुंचाने का। आपके साथ हूं मैं साहिबा, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत फिल्म मर्यादा से है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। हमारे इन श्रोताओं का अनुरोध हम तक आया है इस गीत के लिए। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव, SK पप्पी, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर। ग्राम बोइना पार बालोद से देव नारायण साहू, योगिता साहू, गीतिका, चंचल, उमा और दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और सुनील कुमार।
2: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
3: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं 4 दिन तो जियो जी भर के।
4: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है, और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
3: हाँ भाई समझा।
4: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: आन मिलो सचना, आइए सुने इस फिल्म से ये शीर्षक गीत, जिसको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया, आनंद बख्शी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। अनुरोध करता है हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार, नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान, साथ में अब्बासी परिवार के तमाम लोग, मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रणेता टुकटुक गवाड़कर, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी धवनी गवाड़कर, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब सुनते हैं कैफी आजमी के बोल। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, फिल्म हीर रांझा से। जिसको सुनना चाहते हैं, ग्राम मोहली, तहसील नादरी, सागर से पंडित शिव नारायण तिवारी, श्री सत्यम तिवारी, रश्मि तिवारी, नंदनी, शिवम और नितिन। जमशेदपुर झारखंड सोपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली और देवेन। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से अनुरोध करता है रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से ये है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। आदलपुरा गोगावा से अनुरोध है संजय बामनिया, माया काना और कृष्णा का।

0: ग्रो करने के लिए रेडी है कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: पढ़ाई के साथ कमाई भी, मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ, जो है फिल्म अमानत से। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है, साहिर लुधियानवी ने लिखा है और रवि ने इसके लिए संगीत तैयार किया है। जिसको सुनना चाहते हैं, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, ये हैं। कोपर गांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे। शेव गांव से अनुरोध आया है श्री राम गौंथली और उषा गौंथली का। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर से यह हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिंपल कुमारी और भाव्य देवांगन। ग्राम लोहड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद, रागिनी रिया रेणु और रोनिका यादव। साथ ही ये हैं छत्रपति संभाजी नगर, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोर गांवकर, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन और बेबी ओवी। आपकी पसंद का गीत पेश है।

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, आज फिल्म अभिनेता सचिन जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं और हमारे श्रोताओं ने उन्हीं की एक फिल्म बालिका वधू से ये गीत सुनना चाहा है, जिसे अमित कुमार ने गाया, अनंत बख्शी ने लिखा, आरडी बर्मन ने इसके लिए संगीत तैयार किया। अनुरोध करता है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत। महादेव घाट अमलेश्वर से अनुरोध है डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। यवतमाल विदर्भ से संतोष खटसे, विनोद खटसे। रोहतक हरियाणा से मानसी, ललित और आशु।

और अब साहिबा को इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से। अभी आप सुन रहे थे मन चाहे गीत कार्यक्रम एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी सागर है। वक्त हुआ है संगीत सरिता का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: अगली गजल को आवाज दी है सुधा मल्होत्रा ने। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ग्रो करने के लिए रेडी है क्या? आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, फोन करें, लोकगीत सुने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज शाम 4 बजे से की जाएगी। आप हमें फोन लगा सकते हैं 240-845 नंबर पर। हमारा एसटीडी कोड है 075-82। आज शाम 4 बजे फोन करें, लोकगीत सुने, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा।
0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप ग्रो करने के लिए रेडी है क्या? आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री।
4: और आइए अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश के रूप में सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को। इस गजल के बाद इस कार्यक्रम से हम चाहेंगे अनुमति।

संगीत सरिता। अभी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप समाचार प्रभात सुनेंगे। अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18 लाख

0: 66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-2331-0481 या 2371-7117 या

0: 2371716106 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE, नीट, CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के

0: अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, न इंटरनेट न बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 8:15 हुए हैं। ये वक्त है लोक संगीत का, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इस सावन गीत के साथ, आवाज़ बद्रीलाल मालवीय की।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
4: GST काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आइए सुने देशराज पटेरिया को।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: और आइए अब सुनते हैं द्रौपदी यादव से ये वर्षा की।

अभी श्रोता लोक संगीत में कुछ वर्षा गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है, 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बिंदिया।

नारी की करुणा अंतर जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। सखियों, जयशंकर प्रसाद के इसी सुविचार के साथ आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। जी हाँ, आपको भी बेसब्री से इंतजार रहता है अपने इस कार्यक्रम का। जी हाँ, मन भावन बिंदिया कार्यक्रम का। तो सखियों, स्वीकार कीजिए अपनी बिंदिया सखी सुनंदा तिवारी का हार्दिक नमस्कार। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी तमाम सखियों का कार्यक्रम बिंदिया में। अब सखियों, हम आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाएंगे, आप बने रहिए अपने रेडियो सेट के साथ। हम और आप करेंगे मिलकर कुछ बातें साथ। चलिए, कार्यक्रम के प्रथम क्रम की ओर बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं घर आंगन से। लीजिए सखियों, हम हैं आपके साथ लेकर मौसम और परंपराओं की चर्चा के साथ आपके अपने घर आंगन में। जी हाँ सखियों, अरे अरे, आप किस काम में लगी हुई हैं, जरा आइए तो बैठते हैं घर आंगन में और करते हैं कुछ बातें अपनों के साथ, अपनी और अपनी सखियों से अपनी। बड़ी धूमधाम है आज तो घर आंगन में, और क्यों ना हो, आखिर सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी जो है, जिसे हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। हाँ सखियो, नाग पंचमी का त्योहार, साथ ही कहीं कुश्ती तो कहीं खेल, कहीं मेले हैं तो कहीं झूलों की बहारें हैं, सावन की रिमझिम खनक फुहारें हैं। और क्यों ना हो सखियो, इस सावन में गल बहियां डालकर स्वयं को भी मदमस्त कर लें। आइए इस सावन की मदमस्त छटाओं में, हाँ हाँ, डल गए झूले, आया मन भावन सावन, सलामत रहे सखियो अपना घर आंगन। सखियो, बिंदिया के इस क्रम के अंतर्गत हम अपने घर आंगन की चर्चा आपसे कर रहे हैं। और देखिए, हर घर में इन दिनों बहुत रौनक है, खुशियां हैं, हाँ हाँ, खुशियाँ छाई हुई हैं। और अभी देखिए सखियों, हमने स्वतंत्रता दिवस भी बहुत धूमधाम से मनाया, और आज नाग पंचमी का त्यौहार भी हमारी सखियाँ पूरे रीति रिवाज के साथ मना रही हैं। हाँ बहनों, सावन की झड़ी की तरह बस समझो एक के बाद एक त्योहारों की झड़ी भी मानो लग ही गई, और सावन के रंग रंगीले मौसम का आनंद तो हम सब ले ही रहे हैं। हमारी कुछ बहनें हरियाली तीज से ही अपने मायके भी आ गई होंगी। अरे हाँ हाँ बहनों, हम समझ रहे हैं आपके मन की उमंगों को। एक तरफ सावन की बहार, मायके का प्यार और साथ ही जिम्मेदारियों का एहसास। सच में सखियो, कितना आनंदमयी पल होता है ये, जब पूरा परिवार साथ मिलकर परंपराओं को निभाता है। मन और विचारों में समानता होना, यानी पारिवारिक सामंजस्य होना भी परिवार की एक मिसाल होती है। लेकिन बहनों, इस आधुनिक युग और शहरीकरण के दौर में पारिवारिक विघटन भी तो बहुत हो रहे हैं, कभी सोचा आपने? अरे देखते ही हैं हम, संयुक्त परिवार की व्यवस्था एकल परिवार के रूप में सिमटने लगी है। और आज हम देखते हैं बहनों कि समय की कमी है, जीवन की गति तेज है, और बच्चों का आज बहुत सा समय मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में बीत रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी अनेक लोक परंपराएं और त्योहारों से जुड़ी छोटी छोटी बातें नई पीढ़ी से दूर होती जा रही हैं। तो बहनों, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस नई पीढ़ी को अपने त्योहारों और संस्कृति से जोड़ें, उन्हें संस्कृति का अर्थ समझाकर। बच्चों को सखियों ये जरूर बताना है कि त्योहार केवल कैलेंडर की तारीख बनकर ना रह जाएं, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने का अवसर बने। और सखियों, देखा जाए तो हमें भी तो समय के साथ चलना चाहिए।

ना। अरे हाँ हाँ बहनों, अब हम बच्चों को तो सिखाते हैं और आजकल बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सखियो, आधुनिक बने, नई तकनीक अपनाएं, जीवन शैली अपनाएं, जरूर अपनाएं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहकर। क्योंकि सखियो, संस्कृति तभी जीवित रह सकती है जब एक पीढ़ी उसे अगली पीढ़ी तक केवल बताती नहीं बल्कि जीकर सिखाती है। और सखियो, आज ये संकल्प भी हमें लेना है कि हमारे त्योहार केवल पूजा पाठ तक ही सीमित ना रहें, उन्हें हमारे बच्चों से, परिवार से, प्रकृति से और पर्यावरण से भी हमें जोड़ना है। सखियो, आज का ये जो त्योहार है वन्य जीवों के संरक्षण का भी संदेश देता है हमें। तो सखियो, बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़ना है, क्योंकि परंपराएं भी तभी जीवित रहती हैं जब हर घर के आंगन में उनकी अगली पीढ़ी भी साथ रहती है। तो सखियो, आप सभी इस समय पूजा पाठ में भी लगी होंगी और बहुत सी परंपराएं निभाना है अपने परिवार के साथ मिलकर, बहुत धूमधाम हर घर आंगन में, और ढोल नगाड़ों की धुन भी काफ़ी सुनाई दे रही है आज। लेकिन चलिए, क्यों ना हम भी चलते हैं, सब मिलकर करते हैं शिव आराधना।

सखियों, गीत के बाद हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर हैं लेकर हमारी आपकी बातें। जी हाँ सखियों, हम और आप मिलकर बहुत सी बातें साझा करते हैं। बड़ा मन होता है ना सखियों कि हर बात एक दूसरे से साझा करें। देखिए ना, आज जो त्यौहार हम सभी ने मनाया तो हमारा बहुत मन था कि अपनी सखियों से हम साझा ज़रूर करें अपनी परंपराओं के बारे में, अपने रीति रिवाज के बारे में। तो हमने किया भी और हम घर में भी सभी सदस्य मिल बैठकर अपनी बातें साझा करते ही हैं। लेकिन सखियों, कभी कभी देखते हैं कि कुछ महिलाएं घर में रहते हुए भी अकेली या अकेलापन महसूस करती हैं, तो क्यों करती हैं? हाँ सखियों, आज हम भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनों के साथ समय कम बिता पाते हैं। कुछ बहनें तो बहुत सी बातें अपने मन में महसूस तो करती हैं पर आसानी से किसी से कह नहीं पाती। बस सुबह उठते ही घर की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, मानो बहनों दिन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता। सबकी जिम्मेदारियां उठाते उठाते अपने लिए समय देना ही भूल जाती हैं। जब समय मिलता है तब तक शरीर और मन थक कर आराम करना चाहते हैं। सच में बहनों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में संवाद भी रुक सा गया है। इसलिए सखियों, हमारी आपकी बातें करते हुए हमें एक परंपरा को भी निभाना चाहिए कि घर में महिलाओं से केवल ये ना पूछें कि खाना बन गया, ये काम हो गया, वो काम हो गया, अरे बच्चों ने पढ़ाई कर ली कि नहीं, अरे बच्चों का होमवर्क हुआ कि नहीं। बल्कि महिलाओं से हमें ये पूछना चाहिए, और बल्कि हम तो कहते हैं कि महिलाओं से यह भी पूछें कि तुम कैसी हो, आप कैसी हैं। जी हाँ, अगर सम्मानीय महिलाएं हमारे घर में हैं, बड़ी हैं, आदरणीय हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं। दो शब्द प्यार के बोलिए ज़रूर और जवाब सुनने का इंतज़ार भी करें। ये नहीं कि पूछ लिया और चल दिए, नहीं, जानिए तो कि उनके मन में है क्या। सच में बहनों, जब परिवार में सब एक दूसरे की परवाह करेंगे, संवाद करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे, तो महिलाएं भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगी। और वैसे सखियों, हर रिश्ता खूबसूरत भी नजर आएगा। और देखिए ना सखियों, एक बात और हम कहेंगे कि महिलाएं भी अपने मन की दुनिया को जीवित कर सकती हैं। बहनों, अपने लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, कोई स्वार्थ नहीं है। गीत संगीत, पढ़ाई, पेंटिंग, सखियों से मिलना जुलना, गल बहियां डालकर सखियों के संग टहलना और अपने किसी शौक को फिर से जीवंत करना, बस सखियों यही तो जीवन का एक हिस्सा है। ये स्वार्थ नहीं है बल्कि अस्तित्व को संभालने के तरीके हैं, उपाय हैं। और बहनों देखिए, श्रावण में हमें यही तो याद आता है, और ये सावन का जो महीना है हमें याद दिलाता है हमारे बचपन के झूले, सखियों के संग जो हरियाली तीज पर हम झूले झूलते थे मिलकर एक दूसरे के साथ, ये सब

याद दिलाता है सावन का महीना। और आंगन में चपेटा खेलना, मिल बैठकर हरी हरी पात की मेहंदी रचाना। लेकिन सखियों, सावन के झूले सिर्फ झूलती नहीं थी सखियां, अरे वो तो झूलते झूलते अपने मन की बातें भी साझा कर लेती थी। लेकिन आजकल विचार साझा करना तो अलग बात है सखियों, आसपास बैठे हुए भी कुछ महिलाएं बोलने में झिझकती हैं। इतना संकोच रहता है कि अरे यहाँ इनको तो हम जानते ही नहीं हैं, इनसे हम क्या बात करेंगे। लेकिन सखियों, इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर घर में या आसपास कोई महिलाएं ऐसी आपको दिखती हैं जो सामान्य दिनों की अपेक्षा कम बोल रही हैं, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि ऐसी महिलाओं से ये पूछना है कि सब ठीक तो है ना, कैसी हैं आप। उनसे कहिए कि कोई बात या समस्या है तो वो आपसे कह सकती हैं। अड़ोस पड़ोस में भी आप इस तरह की बातें कर सकती हैं। और कभी कभी कुछ महिलाओं को समस्या का समाधान नहीं चाहिए होता, सिर्फ किसी की बात ध्यान से सुन लेने से ही या अपनी बात कह देने से ही मन हल्का हो जाता है। साथ ही सखियों, हमें भी ये समझना है कि हर चुप्पी नाराजगी नहीं होती और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मन से खुश नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी किसी के जीवन के संघर्ष का संकेत हो सकता है। इसलिए सखियों, किसी से ये पूछ लेना कि सब ठीक तो है ना, ये छोटा सा सवाल सखियों किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। क्योंकि सखियों, रिश्ते हमेशा बड़े बड़े कामों से मजबूत नहीं होते, बल्कि कई बार कुछ मिनट का साथ, थोड़ा सा सवाल, छोटा सा सवाल और बिना टोके किसी को सुन लेना ही किसी के अकेलेपन को कम कर देता है सखियों। इसीलिए कोई शांत बैठा दिखे तो एक मुस्कान के साथ कीजिए एक सवाल, कैसी हो तुम, ठीक तो हो ना, सब ठीक तो है ना। अरे आइए सखियों, इसी मुस्कान के साथ झूलों की बहारों का आनंद लेते हैं इस गीत के साथ।

सखियों लीजिए, गीत के बाद हम अपनी सखियों के संग फिर आ गए। जी हाँ सखियों, हरियाली तीज से झूले भी पड़ गए और सखियां तो गल बहियां डाले झूला झूलने के लिए भी बहुत चहक रही थी। जगह जगह हमने देखा भी सखियों को अपने हरियाली तीज से झूलों की बहार के साथ झूमते हुए। और देखिए, सावन की फुहार, झूलों की बहार, सखियों संग महके मन, हंसी ठिठोली और गीतों से सज उठा ये सावन। सखियों, गीत की इस मधुर गूंज के बाद अब बारी है उन प्रेरक जीवन गाथाओं की जो हमारे मन में उम्मीद और हौसले की रोशनी जगाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले क्रम ज्योति पुंज की ओर। सखियों, हमारे कार्यक्रम के हर क्रम में हम अनेक बातें साझा करते हैं आपसे, लेकिन ज्योति पुंज क्रम के अंतर्गत हम ऐसी शख्सियत को याद करते हैं जिनके नाम हमें याद दिलाते हैं कि देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए ना ही उम्र बड़ी होना जरूरी होता है और ना ही किसी बड़े पद पर होना जरूरी होता है। बस सखियों, मन में देश के लिए कुछ करने का साहस और लगन होना चाहिए। बहनों, जिनकी आज हम आपसे बात कर रहे हैं ज्योति पुंज क्रम के अंतर्गत, वो साहसी महिला थी पार्वती गिरी, जिन्होंने ओडिशा की मदर टेरेसा की तरह ही उन्होंने कार्य किए, तो उनको ओडिशा की मदर टेरेसा के रूप में याद किया जाता है। छोटी सी उम्र में सखियों अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज भी इन्होंने उठाई, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका भी निभाई और आज़ादी के बाद भी इन्होंने अपना जीवन समाज के वंचित और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। और सखियों, इनका जीवन हमें ये बताता है कि सच्ची देशभक्ति केवल देश के लिए लड़ने में नहीं बल्कि देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में भी है। और बस इसी सोच के चलते बहनों, उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, आदिवासियों, अनाथों और पिछड़ों के कल्याण के लिए समर्पित भी कर दिया। अनाथालय की स्थापना भी की और उनके सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए उन्हें संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। साथ ही सखी उन्होंने कुष्ठ रोग उन्मूलन का कार्य भी किया। कुष्ठ रोगियों की सेवा और समाज से इस बीमारी को अलग करने के लिए बड़ा संघर्ष भी उन्होंने किया। पश्चिम ओडिशा के पिछड़े और आदिवासी समुदायों के बीच जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेश के लिए उन्होंने कार्य किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया। सखियों, कितनी अच्छी बात है ना कि ये अपने साहसिक प्रतिरोध कार्यों के लिए जानी जाती थीं। निडर, राष्ट्रवाद और जन आंदोलन को संगठित करने की क्षमता के कारण उन्हें वनही कन्या की उपाधि से भी नवाजा गया था। वाह सखियों, कितनी अच्छी बात है कि कितनी अच्छी उपाधि इन्हें दी गई। और पार्वती गिरी को बहनों उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने सन 1984 में सम्मानित भी किया।

लेकिन सखियों कहते हैं ना कि कार्य अमर रहते हैं इंसान के, और ऐसा ही कुछ हुआ। 17 अगस्त सन 1995 को वे पंचतत्व में विलीन भी हो गईं। आज ही का दिन था सखियों, लेकिन वे अपने पीछे सेवा, त्याग और नैतिक सार्वजनिक जीवन से जुड़ी एक प्रेरक विरासत भी छोड़ गईं, जो आज भी सामाजिक कार्यकर्ताओं व राष्ट्र सेवकों को मार्गदर्शन देती है। सखियों, इसी प्रेरक संदेश के साथ अब हम ज्योति पुंज क्रम को यहीं विराम देते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते चलते, जी हाँ सखियों, चलते चलते आपसे और भी तो बातें करनी है। आखिर मौसम भी बरसात का है और देखिए त्योहारों की झड़ी भी बस आज से लग ही गई, और हमारी सखियाँ तैयारियों में भी जुट गई हैं क्योंकि त्योहार आने वाले हैं। आज से ही सारी परंपराएं और रीति रिवाजों को निभा रही हैं। देखिए सखियों, स्वास्थ्य उत्तम है तो सब त्योहार खुश हैं, है ना, और हमारा परिवार स्वस्थ है तो हम भी खुश हैं, और हमारे हर त्योहार खुश हैं, और त्योहार तो खुशियां लाते ही हैं। और देखिए त्योहार शुरू होते ही दुकानें भी तरह तरह की रंगीन मिठाइयों से सज जाती हैं। अब इस समय तो राखियों से भी सजी हैं, रुमाल से भी सजी हैं, बहुत से रंग बिरंगे खिलौनों से भी सजी हैं, और साथ ही अब मीठा ना हो तो त्योहार कैसा, है ना, खुशी और मिठाई दोनों ही ज़रूरी हैं। तो देखिए अभी हम जैसे जाते हैं कि बाज़ार से ही हम चमक दमक देख के हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो नहीं सखियो, थोड़ी सी सावधानी बरतना है और ये हमें देखना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं। तो देखिए अभी दुकानों में आप जब भी देखेंगे तो रंगीन मिठाइयाँ सजी धजी दिखती हैं, लेकिन बरसात का मौसम देखते हुए सखियों त्योहार में बाहर की खुली मिठाइयाँ और खाद्य पदार्थ खरीदने से हमें बचना है। सखियों, मिठाइयाँ खरीदते समय बनाने की तारीख और उपयोग की अंतिम तारीख जरूर देख लें। अरे सखियों, पैक्ड मिठाइयाँ हैं तो उस पर तारीख डली हुई होती है, देख सकती हैं, और अगर पैक्ड नहीं है तो उसके लिए भी आप दुकानदार से ये ज़रूर पूछें कि ये मिठाई कब बनाई गई है। लेकिन अगर फिर भी मिठाइयाँ खुली हैं, मक्खी मच्छर उस पर हैं, तो बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना है सखियों। इस मौसम में देखिए दूध, मावा, पनीर और मिठाइयाँ जल्दी ख़राब होती हैं, इसलिए ताज़ा ही खरीदें और उचित तापमान पर रखें। अगर आप घर में ही बना रही हैं तो उसके लिए इन सब चीज़ों को खरीदने के पहले भी आप ये देख लें कि ताज़ा है कि नहीं। और बाहर कटे हुए फल और खुले में रखे चाट पकौड़े बिल्कुल नहीं लेना है, और लंबे समय तक रखे हुए खाद्य पदार्थ खाने से भी सखियों बचना है, क्योंकि देखिए त्योहार हैं, त्योहार तो दस्तक दे ही चुके हैं, त्योहार हम मना रहे हैं और त्योहारों में हमें हर तरह से अपने परिवार का भी ध्यान रखना होता है। तो सखियों, ये बातें आपसे करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो अपनी सखियों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमारी सखियाँ खुश हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। और देखिए अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए घर पर ही पौष्टिक मिठाइयों की तैयारी कर लीजिए, अभी तो हमारे पास समय काफ़ी है ना बहनों। हाँ बहनों, घर पर भी साफ सफाई और ताजी सामग्री का विशेष ध्यान रखना है। त्योहार खुशियाँ लाते हैं सखियों, इसलिए स्वाद और सेहत का खास ख्याल रखना है। और सखियों, अब देखिए हमें समय का भी ख्याल रखना है, लेकिन चलते चलते हम एक बात और आपसे करते हैं कि त्योहारों पर मिठाइयों की बात तो हमने आपसे कर ली, लेकिन जिस त्योहार को हम मनाने के लिए इतने उत्सुक हैं और मिठाइयों की चर्चा हम कर रहे हैं, उस त्योहार के बारे में भी हम अपनी सखियों से इतना ही कहेंगे कि सखियों देखिए, राखी केवल धागा नहीं, भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। आज त्योहारों में दिखावे और महंगे उपहारों का चलन बढ़ता जा रहा है, तो सखियों हमें राखी के रिश्ते की कीमत पैसों से बिल्कुल नहीं आंकना है, भावनाओं को समझना है, महंगे उपहारों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, अपने परिवार के और अपने भाइयों के स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए अपने इस रिश्ते को, भावनाओं को महत्व दें, रिश्ते को महत्व देना है, भावनाओं को महत्व देना है। राखी की डोर जितनी सरल होती है सखियों, उसका भाव उतना ही गहरा होता है। देखिए सखियों, बातें तो बहुत हैं इस विषय पर करने के लिए, अब हम आपसे बातें आगे भी करेंगे, लेकिन समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो ख्याल रखना है हमारी आज की हुई बातों का, और इतना ही कहेंगे कि त्योहार की मिठास

बनी रहे बरकरार, स्वच्छ और सुरक्षित खानपान से मनाए हर त्योहार। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बिंदिया सखी सुनंदा तिवारी को कार्यक्रम बिंदिया संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब वक्त है एक और छोटे से अंतराल का।

0: बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज़ें थी। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा ने धुन बनाई थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
5: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
4: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की

0: आशिक की टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ें तुलसी कुमार और केके की थी, इरशाद कामिल के बोल थे और जीत गांगुली का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की।

0: संचार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: सावन की हवा में घुली है मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली का प्यार प्यार और नोक झोंक। पहला लाभ गीत सुन रहे थे मुबारका फिल्म से मीका सिंह की आवाज थी, कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था।
1: कितने अरमान
0: फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था। बार बार देखो फिल्म का ये गीत अमर आरशी बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाजों में। अमरीक सिंह और कुमार के बोल हैं।

बार बार देखो फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। आप स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्हें कोदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन

दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके करियर की शुरुआत बचपन में ही हो जाए और उसी उम्र से उन्हें सफलता भी मिले। हिंदी फिल्मी दुनिया में तो ऐसे नाम बहुत ही कम है जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया हो और अभिनय के क्षेत्र में ही बड़े होने तक सफलतापूर्वक नायक या नायिका के रूप में वो काम करते रहे हों। ऐसा ही एक कीर्तिवान कलाकार है जिसने हिंदी और मराठी फिल्म जगत में समान रूप से पूरी अधिकारिता के साथ अपने फन का लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों,

0: हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज कलाकार सचिन की, जिनका पूरा नाम है सचिन पिलगांवकर।
1: बड़े अच्छे लगते हैं।
2: क्या

0: बचपन ने मेरे अभिनय की कला को और ज्यादा सवारा, क्योंकि उस उम्र में कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनसे बहुत कुछ सीखना नसीब हुआ। और उसके बाद ये दौर चलता रहा, जारी रहा, और होते होते मैं और कुछ सीखता गया। पहले मैं अपने बड़ों से सीखता था, आज अपने छोटों से सीखता हूँ। मुझे पहली फिल्म का ऑफर मिला होमी वाडिया साहब, जिनकी बसंत पिक्चर्स, जो बहुत फेमस स्टंट फिल्म्स बनाने में बहुत मशहूर हुआ करते थे, उनकी फिल्म थी जिम्बो का बेटा। उसमें मुझे उन्होंने टाइटल रोल के लिए सेलेक्ट किया, और जिम्बो मतलब टार्जन का एक इंडियन रूप हम समझ सकते हैं वैसा था। और उसमें बाकायदा मुझे टार्जन के जैसे कपड़े पहनाए गए, एक खंजर और वो जो टिपिकल टार्जन के कपड़े थे, उनमें मैंने पहली बार हिंदी में पदार्पण किया। और उसके बाद कई हिंदी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन उसमें से एक अविस्मरणीय फिल्म बचपन की हिंदी में जो थी, वो थी मंझली दीदी, जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी, और जिसमें मुझे अवसर मिला था मीना कुमारी जी के साथ काम करने का। और बचपन में काफी मतलब ब्रह्मचारी, फिर चंदा और बिजली, बचपन, ऐसी अनगिनत फिल्मों में काम किया।
1: 17 अगस्त 1957 को जन्मे सचिन पिलगांवकर ने जब बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष। 1962 में रिलीज हुई इस मराठी फिल्म का नाम था हा माझा मार्ग एकला, और इस फिल्म में अभिनय के लिए सचिन को सर्वोत्तम बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद उन्होंने लगभग 65 हिंदी मराठी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं मझली दीदी, ज्वेल थीफ, चंदा और बिजली, ब्रह्मचारी, मेला और कृष्णलीला।

0: बाल कलाकार के तौर पर काम करने वाले सचिन के जिगरी दोस्त थे जूनियर महमूद। दोनों ने मिलकर 15 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें से उल्लेखनीय फिल्में थीं ब्रह्मचारी, नायक थे शम्मी कपूर,
1: चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली।

1975 की फिल्म शोले न देखी होगी। इस फिल्म में सचिन द्वारा निभाया गया किरदार अहमद आज भी सभी को याद है। अब सचिन बाल कलाकार नहीं थे, वो एक युवा कलाकार बन चुके थे। उसी वर्ष बतौर नायक उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई गीत।

0: गीत गाता चल ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी जमी नई नवेली अभिनेत्री सारिका के साथ। आगे इस जोड़ी ने और भी कई फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें याद किया जाता है केवल गीत गाता चल के लिए। अगले ही वर्ष यानी 1976 में सचिन की एक और फिल्म रिलीज हुई, बालिका वधु। इस फिल्म के नायक अमल की भूमिका के लिए सचिन को खूब सराहना मिली।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

1978 में सचिन की 3 फिल्में आईं, जिनमें से 2 फिल्मों में वे नायक थे और 1 फिल्म में सहायक अभिनेता। अब नायक हो या सहायक, अभिनेता सचिन हर रूप में छा जाने वाले कलाकार हैं। 1978 की यादगार फिल्में थी राजश्री प्रोडक्शंस की अखियों की झरोखों से और कॉलेज गर्ल, और यशराज फिल्म्स के बड़े बैनर तले बनी फिल्म त्रिशूल। आइए इन तीनों फिल्मों में से सचिन पर फिल्माए गए गीतों का ये मिडले सुनते हैं।

0: kapuchi kapuchi gam gam kishiki kishiki kam kam kapuchi kapuchi gam gam।
1: फिल्म त्रिशूल से सचिन एक बार फिर सहायक अभिनेता के रूप में ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगे। फिल्में थीं अवतार, सुरसंगम और सत्य पे सत्ता। 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। सचिन अपनी मातृभाषा मराठी की ओर बढ़े। पारध, इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे नूतन, सारिका और डॉक्टर श्रीराम लागू। 1979 में शरद पिलगांवकर निर्देशित फिल्म अष्टविनायक रिलीज हुई, जो एक

सुपर डुपर हिट फिल्म रही। नायक थे सचिन। लग रहा था मानो अब सचिन मराठी में ही बस जाएंगे। उसी दौरान वो एक बार फिर हिंदी फिल्मों में बतौर नायक और सहनायक दिखाई दिए। 1980 में जुदाई, 1981 में स्वीटी, 1982 में सत्य पे सत्ता और नदिया के

1980 से सचिन ने मराठी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन शुरू किया। 1982 की पहली फिल्म माय बाप को समालोचकों ने खूब सराहा, परंतु सचिन ने निर्देशक के रूप में व्यावसायिक सफलता का रस पहली बार चखा 1984 में। फिल्म थी नवरी मिले नवर्याला। नायिका के रूप में थी उनकी पत्नी सुप्रिया। उसके बाद आई फिल्में गम्मत जम्मत और माझा पति करोड़पति की सफलता ने सचिन को एक निर्देशक के रूप में पुख्ता जगह दी। और उसके बाद 1988 की मल्टी स्टारर फिल्म अशी ही बनवा बनवी को मिली अपार सफलता ने सचिन को हिट फिल्म मेकर की श्रेणी में लाकर बिठाया।

0: शारीरिक भी है कि हम एक दिन में तो स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, तो वैसे ही मानसिक फ्रीडम है कि हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें सोच में हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जैसे हम भोजन में क्या खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्या नहीं खाएंगे तो अस्वस्थ नहीं होंगे, वो वाली चीज है कि किससे फायदा है किससे नुकसान। तो यहाँ भी हमें यदि मानसिक फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छा रूटीन चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि शरीर और दिमाग जुड़े हुए हैं
1: जी
0: और प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, तो हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं पहली चीज। दूसरा है कि हमारे मन में क्या चीज हमें एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे डिस्ट्रेक्शन है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपका समय नष्ट करती हैं, उनसे बचना है। दूसरा है कि हमारे यहाँ हम जहाँ रहते हैं हमारा जो देश है उसमें क्या अच्छा है, हम पॉजिटिव्स पे ध्यान दें। आजकल की दुनिया बहुत नेगेटिव होती जा रही, इसीलिए मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं कि बुराई पहले निकलती है।
1: सही बात।
0: तो वो जो एक हमारी जो गुलामी जो है, गुलामी कारण क्या है, हम अपनी चीजों को तो हम नेगेटिव में ले रहे हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं कि वहां ऐसा है, वेस्ट में ऐसा है, तो फला जगह ऐसा है, तो उनने ऐसा कर लिया। ऐसा नहीं है, हो सकता है उनने हमसे ही सीख के किया जो हम पहले करते थे। तो हम सबसे पहले तो अपने आप को कोसना दूर करें कि हम पॉजिटिव रहेंगे। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, जहां भी हम काम कर रहे हैं, कोई किसी भी पद पे हो सकता है, कोई भी काम कर रहा हो, सबसे पहले सारे काम अच्छे होते हैं ये सोचना है। जो हमारा काम उसको मन से करेंगे, उसके बाद उससे जो भी हमें रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें खुश रहेंगे। ठीक है, अति आकांक्षा अच्छी बात, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन दूसरों से, खुद से रखना गुड है, दूसरों से ज्यादा आकांक्षा करने लगते हैं तो वहां मानसिक गुलामी आती है। हम मानसिक गुलामी की बात कर रहे हैं ना कि फ्रीडम कैसे है, तो हम अपने आप से उम्मीद रखें, अपने कर्म पे ध्यान दें, फ्री हो। दूसरों से यदि अति अपेक्षा रखेंगे तो आप उनकी एक्टिविटी के हिसाब से उनके रिएक्शन के गुलाम होंगे। तीसरी बात है कि आप मुखर रहें, एक्सेप्ट करें चीजों को। यदि आपसे गलती हुई है, कोई चीज

0: हर चीज गलत नहीं है, स्वीकारता होनी चाहिए कि हम यार यहाँ गलत थे, हम ये इम्प्रूव करेंगे। जैसे शरीर में कि यार हमारे हाथ पैर अब कमजोर हो रहे हैं तो हम कसरत करेंगे, तो वो अपन ने पहले एक्सेप्ट किया ना कि हम में प्रॉब्लम है, फिर हमने उसको इम्प्रूव किया, वही मानसिक उसमें करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम धीरे धीरे मानसिक स्वतंत्रता की तरफ जाएंगे, मानसिक शक्ति हमारी बढ़ा पाएंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानसिक रोग कम से कम,
1: कम से कम। और मैं समझता हूं कि मानसिक रोगों में या आपको मानसिक आजादी चाहिए तो उसके लिए स्वस्थ मानसिकता अपने अंदर पैदा करना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ मानसिकता तभी पैदा होगी जब आप सकारात्मक सोचेंगे
0: जी,
1: और सकारात्मक करेंगे भी। सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है, आपको करना भी पड़ेगा। प्लान तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन जब तक आप उस पर क्रियाशील नहीं होंगे तब तक आपको परिणाम हाथ नहीं आएंगे।
2: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिर दर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यावहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9406925768, हमीदिया हॉस्पिटल के सामने, 27 न्यू ताज मार्केट एवं 11 ऋषि कॉम्प्लेक्स, DIG बंगला चौराहा, भोपाल।
3: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी, बरेली, उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है।
1: एक बात और है सर, इस समय हमारे जो युवा पीढ़ी है, देश की युवा पीढ़ी के अंदर एक जुनून है इस समय मानसिक आजादी का। उनको एक फ्रीडम चाहिए, हम जो चाहे वो करें, हम जो करेंगे वो सही करेंगे, या हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, युवाओं के लिए उनके पास इतने सारे ऑप्शन हैं इन्फॉर्मेशन के, या आजकल सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या है, बहुत सारे कंटेंट जो है वो वेरीफाइड नहीं, वो प्रूवन नहीं, वो आधे अधूरे ज्ञान वाले। तो यदि आपको कुछ करना है, अच्छी बात है, या फिर हम ही सही हैं पुराने, या फिर ये बात गलत है, तो ये एक गलत मानसिकता है। आप में एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आप हर व्यू को समझिए, उसको वेरीफाई करिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए। अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है, घातक होता है। वही हो रहा है युवा पीढ़ी के साथ। किसी ने कोई कंटेंट बना के डाल दिया आधे अधूरे ज्ञान की तरह, पॉडकास्ट बन गया, या फिर आपकी एक रील आ गई, उसमें आधा ही ज्ञान है, आधी बातें बोली जा रही, और ये युवा देखा और उससे इन्फ्लुएंस हो गया। तो क्यों हम किताबें पढ़ते हैं या बुजुर्गों का अनुभव लेते हैं कि भाई उसको वेरीफाई करिए। आपके पास सब कंटेंट अवेलेबल, आप उसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद उस पर भरोसा करिए। ऐसे में मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी चीज पे आप यदि भरोसा कर रहे हैं तो पहले उसे पूरी तरह जानिए, समझिए और अपना दिमाग लगाइए। ये नहीं किसी ने बोल लिया और अपन चल दिए, ये तो गुलामी है ना।
1: सही बात है।
0: आप फ्री कब होंगे? जब आप अपना उपयोग दिमाग का करेंगे और चीजों को जज करेंगे। वो तभी आएगा जब उस चीज का आप ज्ञान पूरा लेंगे।
1: वाकई सर, आपका बिल्कुल सच कहना है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात है कि हम जो चाहे करें, हमें आज़ादी है, हम किसी को भी अपशब्द बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, ये हमारा फ्रीडम है। पर हमारे राष्ट्र की पहचान ये नहीं है
0: जी।
1: हमारे राष्ट्र का अपना एक चरित्र है, हमारे राष्ट्र की अपनी एक नीति है, और वो एक नैतिक धर्म जिसे हम कह सकते हैं, हमें उसके अंदर तो जीना ही पड़ेगा
0: जी।
1: उससे बाहर जाकर अगर आप सोचते हैं कि हम नैतिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं, तो ये शायद कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्तता की ओर जा रहे हैं। आप
0: यंग लोग हैं, गलती कर सकते हैं, क्षमा करना बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन क्षमा के साथ सुधार भी जरूरी। या फिर हम समय से पहले उनको ऐसी चीजों का एक्सपोजर मिल जा रहा है जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो समझाना, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश का कोर क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसे नहीं छोड़ना। आप कॉपी करो, वेस्ट की कॉपी कर लो, ईस्ट की कॉपी, कॉपी वाला जनरेशन ज्यादा दिन नहीं चलती। जो ओरिजिनल हमारा देश में जो चीज है, उन वैल्यूज को आपको नहीं छोड़ना है, और आगे गलती ना हो उससे सीखते हुए युवाओं को चलना पड़ेगा, तभी वो मेंटली स्ट्रांग भी रहेंगे और इस देश की फ्रीडम को बनाए भी रखें।
1: मित्रों, वाकई ये ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारी बात की जा सकती है, पर आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने विशेष रूप से एक डॉक्टर साहब से ये बातचीत की है, क्योंकि हमारा मानसिक प्रदूषण ही कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रदूषित कर देता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे एपिसोड्स में हम फिर बात करेंगे विभिन्न प्रकार के मनोरोगों पर। अभी

0: से बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी।
1: ये आकाशवाणी सागर है।

0: इस अवसर पर आमला विधायक डॉ. योगेश पंडागरे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज ध्रवे, पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में वंदे मातरम के सामूहिक गायन ने देशभक्ति की भावना का संचार किया। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली भी निकाली गई और फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश के वाचन को एलईडी के माध्यम से देखा और सुना गया। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों के आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत 14 अगस्त को सचिव श्रम विभाग रघुराज राजेन्द्रन और कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनबड़े ने बैतूल विकासखंड की ग्राम पंचायत खेडला में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन पात्र हितग्राहियों के आवास अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनकी सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। खिडला में ढूंढा तक सड़क नहीं होने से बारिश के दौरान आवागमन में ग्रामीणों को होने वाली परेशानी पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने 12 अगस्त को आठनेर जनपद के ग्राम बोरपानी में 65 लाख की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र आरोग्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि बोरपानी में 65 लाख की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र से गांव के लोगों को छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बैतूल में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारम्भ शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर वीरांगना रानी दुर्गावती और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को भी पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा है कि देश भर में हर घर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। जिला प्रशासन बैतूल द्वारा फ्रीडम रन हम दौड़ेंगे देश के लिए का आयोजन किया गया। फ्रीडम रन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके ने 13 अगस्त को शासकीय एकलव्य महिला आईटीआई में 10.68 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके अंतर्गत शासकीय आईटीआई में 60 सीटर बालक छात्रावास तथा एकलव्य महिला आईटीआई में 6 ट्रेड के आधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। श्री विखे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। रक्तांजलि एक रक्तदान राष्ट्र के नाम अभियान के तहत जिला स्तरीय मेगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वीर शहीदों की स्मृति में आयोजित इस शिविर में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनबड़े और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे ने स्वयं रक्तदान कर नागरिकों को प्रेरित किया। शिविर में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, छात्र छात्राओं, युवाओं, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा समाज सेवियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। शिविर में 400 यूनिट रक्तदान हुआ। जिले में खरीफ मौसम में फसल बीमा तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 17 अगस्त यानी आज तक कर दी गई है। कृषि उपसंचालक आर के रजक ने बताया कि मौसम की विपरीत परिस्थिति के चलते भारत सरकार ने फसल बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 17 अगस्त यानी आज तक की है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा इस योजना से जुड़ सके। युवा संगम के तहत जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन 13 अगस्त को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके उपस्थित थे। जिला रोजगार अधिकारी श्याम कुमार दुर्वे ने बताया कि रोजगार मेले में 269 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया। इस दौरान 10 निजी कंपनियों के द्वारा कुल 216 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं, फोन करें, लोकगीत सुनें।

0: आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पे बातचीत कर रहे हैं हम राजेंद्र नारायण तिवारी
1: और हम भैया जयशेखर। और स्वीकार करो भैया हम दोइयों की
0: राम राम, राम। और जयशेखर भैया कार्यक्रम में श्रोताओं के फोन आवो शुरू हो गए हैं, तो आओ देखते हैं पहले फोन पे को है।
1: लेते हैं भैया जो पहलो फोन। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ भैया फोन करें, लोग की सुने में स्वागत है आपको।
2: जयराम जी की जैसे करवाई।
1: जयराम जी भैया अपना नाम और बता देते।
2: हरिचरण बोल रहे हिरनखेड़ा सागर जिला।
1: भैया जो हिरनखेड़ा है कहाँ पे आपको?
2: रातगढ़ से 22 किलोमीटर पश्चिमी तरफ।
1: अच्छा अच्छा, चलो भैया बहुत अच्छी बात है। मौसम तो भैया मेहरबान है थोड़ो सो।
2: हाँ मौसम कल तो उमदा बारिश हो गई।
1: हाँ और अपन तो यही दुआ करते हैं भैया कि खूब बारिश हो और खूब जंगल भी लगे रहे और अपन और लगात भी रहे। तो भैया करत का हो हिरनखेड़ा में?
2: हम बिड़ी बनार।
1: बहुत मेहनत को काम है भैया।
2: हाँ
1: हाँ, हफ्ता मिला था भैया के अबे महीना?
2: हफ्ता पे मिल जाते हैं।
1: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है, खूब मेहनत करो और खूब अपने भैया रोजी रोटी चले आपकी। अब भैया आप जानते ही हो कि हम एक अटका पूछा था।
2: हाँ अटका हम जाना था, हम सुना थे निभाजी।
1: अटका कह रहा है कि सोने की बात चीज है मनो बेचे ने सुनार, मोल तो ओको ज्यादा नहीं मनो खूब है ओको भार। भैया सोने की चीज है जा?
2: मैं तो नहीं आ रहा।
1: कोई बात नहीं भैया, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे आपको?
2: सुना दियो।
1: गायक कलाकार को और नाम बता दो भैया।
2: राजू पटेल को।
1: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे राजू पटेल और उनके संगीत साथियों को गाओ भाव जो सैरो। अरे

तो फरमाइशी लोकगीतों के फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में सभी श्रोता भैया बिन्नाहारों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।

0: हेलो,
1: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते भैया, कुआ बोल रहे हैं?
1: हमें बोल रहा है आपके नीचे श्रोता का चाली राजा कुआ लेके।
0: वाह भैया चाली राजा, बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम। फोन करें लोग की सुने में।
1: जी सर,
0: बताओ भैया कहाँ हो रहो?
1: अब देखे हैं सर, दुकान करे हैं किराने की।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो कैसी चल रही भैया किराने की दुकान?
1: अरे अच्छी चल रहा था सर, अपन का है बंदा की रेट पे सौदा रेट सवाल ग्राहकों को।
0: अच्छा,
1: जैसे 70 मिल रही सर, अपन खुद 5300 बच जाती। 55 की बेच रहा है।
0: तो भैया अब शक्कर के रेट काया बढ़ गए?
1: अब ये सब बढ़ रहा है तो जो पेट्रोल तो बनने लगो वो दे रही हुए।
0: अच्छा,
1: पेट्रोल ही बन रही है
0: भैया। हमें तो ऐसा लगा तो राखी को त्योहार आ रहा है
1: जी,
0: तो त्योहार की वजह से शक्कर के रेट बढ़ गए।
1: गन्ना की आ गई है कमी, अब गन्ना तो हो नहीं सकत बस काड़े। बहुत ठंडो ही काम चलत रहे।
0: तो भैया आप देखो, शक्कर की मिठाई भी बनने भैया, और अपन को पेट्रोल से गाड़ी भी चलाने,
1: दो बातें हैं।
0: चाहे मिठाई खा लो भैया, चाहे गाड़ी चला लो।
1: अरे बीच में सर हमें मिली थी 4200 की बोरी, अपन ने दिया 4300 में, और अब मिली है अपन को 2700 की,
0: 50 किलो की बोरी।
1: हाँ।
0: तो भैया जा बताओ के गांव में 50 किलो की बोरी कितने दिन में खत्म हो जात भैया?
1: अपनी हो जाए 20 दिन में।
0: अच्छा, यानी भैया ग्राहक कम कहा है आपकी?
1: फक्कर आ रहा थे कब को आ रहा हो, जैसे को फोन कर लग गई तो कही उनने कही 5 किलो शक्कर दे दीजो। चली जाट हमारी।
0: चलो भैया अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: तो चाली भैया जा बताओ के आज कौन सा लोग की सुनने हैं?
1: फरमाइश अपन को सुनने चंद्रभूषण पाठक को।
0: अच्छा, चंद्रभूषण पाठक को कौन सो?
1: वो सुनने हैं एक दिन आपस में बोली नदियाँ करके सेन।
0: वाह भैया, बहुत अच्छे लोकगीत की फरमाइश आपने करी है। नदियों की बात हो रही है ये लोकगीत में, और राखी बांधवे की भी बात हो रही है, मायके जावे की भी बात हो रही है, और साहुन की बात हो रही है भैया। तो बड़ो सामयिक लोकगीत आपने चुनो है, आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर दे हैं। और अब सुन ले भैया आज को अटका।
1: बताओ सर।
0: सोने की बात चीज है, मनो बेचे ना सोनार, मोल तो वो को ज्यादा नहीं, मनो खूब है वो को भार। बताओ।
1: डब्बी है सर।
0: है डब्बी, काहे की डब्बी?
1: डब्बी मुझे आज के घर में से बहुत ही ऊपर रहे थे सोने जैसी, ये कही
0: है। हाँ हाँ भैया, वाह नोई।
1: तो संकेत में है?
0: संकेत भैया वह सोने की चीज है।
1: अच्छा, सोने की है वो?
0: हाँ।
1: अब फिर तो बोलो सर।
0: सोने की वह चीज है। हाँ। मनो बेचे ना सुनार।
1: हाँ।
0: मोल तो को ज्यादा नहीं है। हाँ। मनो खूब

0: है वो को बाहर।
1: अच्छा,
0: वजनदार चीज है भैया सोने की। चलो भैया कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनत रहो, कार्यक्रम के अंत में हम और बते हैं। और अब आपकी फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाओ जो लोकगीत।
2: एक दिन आपस में

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुनने में स्वागत है आपको।
1: धन्यवाद सर। अमित का चौक टेरोवाद खोरई से परमानंद बोल रहा है।
0: तो भैया परमानंद भैया कछु बताओ, मौसम ने तो अंगड़ाई ले ली है और थोड़ी सी रिमझिम रिमझिम भी होने लगी है।
1: अरे रिमझिम 36 घंटा पानी गिरो खोरई में।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है। तो खेती किसानी में तो भैया लोगों को बहुत फायदा हो रहा होगी अब तो।
1: मजा होगा लगा दी फिर से उनने।
0: हाँ हाँ चलो भैया बहुत अच्छी बात है। और बताओ भैया, रेडियो के कौन से कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं आजकल आपको?
1: सभी अच्छे लग रहा है। बाल सवाद बाबा के पिटारा है, ठीक है नहीं, भागा समाज भी अच्छा लग रहा हो, और गागर में सागर वो भी अच्छा लग रहा हो। सब कार्यक्रम एक से बढ़कर एक लग रहा है।
0: तो भैया अब हम एक अटका भी पूछे ले रहे हैं आपसे।
1: आओ।
0: अटका कह रहा है, सोने की बात चीज है मनो बेचे न सुनार, मोल तो उको ज्यादा नहीं मनो खूब है उको भार।
1: खूब है उसको भार। कैसे संकेत दो?
0: संकेत भैया सोने की

0: चीज है बा, पीतल की नहीं है।
1: अच्छा सोने को बहुत है भार और?
0: हाँ भार खूब है।
1: झुमकी?
0: नहीं भैया।
1: अच्छा नाक की नथ?
0: नहीं। अब बताओ भैया लोकगीत कौन सा सुनवा दे?
1: रामचरण यादव को।
0: रामचरण यादव को?
1: हाँ शेरो सावन की वर्षा बाजार गया।
0: ठीक है सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे रामचरण यादव को गाओ भाव जो शेरो।

0: हेलो।
1: जयराम जी सर।
0: जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें, लोग गीत सुने।
1: हम ग्राम बरेठी से बोल रहा दयाराम अहरवा।
0: तो दयाराम भैया, अपने बारे में बताओ, कछु का करत हो?
1: बस खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती किसानी करते रहते हैं।
0: खेती किसानी के का हाल चाल है?
1: खेती किसानी की तो अगर ठीक है, और पानी अब गिर रहा कल से।
0: देखो, पानी गिर रहा है तो किसानों की जो खुशी है, बा भैया वापिस लौटे आई है।
1: हाँ, लौटे आई वापस सरकार।
0: तो भैया ये मौसम में का लगाए अपन?
1: हम उड़द लगाए हैं सर जी।
0: अच्छा, उड़द ही उड़द।

0: भैया देखो का है जो अपने विशेषज्ञ बताऊ थे के अपन अलग अलग प्रकार की फसलें लेवे, जैसे भैया अगर एक फसल में नुकसान होते है तो दूसरी फसल भैया उसकी पूर्ति कर सके। तो फसल विविधीकरण को एक अलग ही महत्व है भैया खेती किसानी में, तो ये बात को अपन को समझो चाहिए। तो बताओ भैया आज फरमाइश का लेके आए हो?
1: पुरुषोत्तम ठाकुर को जल्दी सुनवा देना सर।
0: पुरुषोत्तम ठाकुर को कौन सो
1: जी सुनवा देना।
0: चलो भैया बिल्कुल आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर दे हैं। और अब बारी आ गई आज के अटका की।
1: अटका बोला सर जी, बनेगा तो बताएंगे।
0: तो सुनो ध्यान से भैया, कई सोने की वह चीज है मनो बेचे ना सोनार, और मोल तो को ज्यादा नहीं है मनो खूब है उको भार।
1: तो बर्रैया मनो पीली
0: रहते नहीं भैया, बर्रैया को भार ज्यादा हो थे का?
1: और भार काट खाते
0: नहीं भैया, वजनदार चीज है जा
1: वजनदार।
0: हाँ वो सोने की वह चीज है। बताओ
1: सोने की चीज है यार।
0: आओ ये अटका में सब भैया संकेत है,
1: फिर से हम दोहराया।
0: चलो भैया फिर से सुन लो, कई सोने की वह चीज है मनो बेचे ना सुनार, मोल तो उको ज्यादा नहीं है मनो खूब है उको भार।
1: अच्छा चंदा तो नहीं है सर जी?
0: हैं
1: पूरा चंदा।
0: हाँ हाँ भैया, चलो भैया कोई बात नहीं, आपसे नहीं बन रहा भैया एक उत्तर। अब आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपके लाने सुनवा रहे हैं पुरुषोत्तम ठाकुर को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको। अपना नाम बता दो।
1: हल्ले भाई बोल रहे हैं।
0: तो हल्ले भैया, अब कहाँ चल रहा है बारिश की रिमझिम रिमझिम फुहार में?
1: अबे का तुम्हें ज्यादा पानी हुआ तक नहीं रहा है
0: भैया। ज्यादा समस्या कई जगह देखने में आ रही है कि इस साल थोड़ा पानी की कमी दिख रही है। तो भैया खेतों में तो के हाल चाल?
1: हाँ सही है।
0: चलो अच्छी बात है भैया, सही बने रहे भैया। इससे ज्यादा अपन को कहा चाहिए बताओ?
1: और कहा?
0: तो भैया आप जाना था कि हम एक कार्यक्रम में पूछा थे एक अटका। तो अटका कह रहा है कि सोने की बात चीज है, मनो बेचे ना सुनार, मोल तो उको ज्यादा नहीं, मनो खूब है उको भार।
1: ये को कछु संकेत दियो सर।
0: संकेत यही में छुपो है भैया, कछु बतावे की जरूरत नहीं है बिल्कुल।
1: आप भाई बता दियो सर।
0: अरे हिम्मत तो करो थोड़ी सी।
1: सोना ये है, हो सकत
0: है
1: सोना।
0: चलो भैया अब बता दो के लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: लोकगीत सुनवा दो पथरीगढ़ की लड़ाई जगदीश विश्वकर्मा को आला।
0: सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे जगदीश विश्वकर्मा को गाओ भाव जो आला।
2: सुमुर

0: हेलो
1: हेलो जयराम जी साहब।
0: जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोग गीत सुने।
1: हाँ जयराम जी भैया, लोग गीत सुने।
0: अपन को आ बोल रहे भैया।
1: हम बोल रहे ग्राम सिद्धोनी बंदा तहसील राम स्वरूप पटेल।
0: अच्छा, गांव को नाम क्या बताओ भैया?
1: सिद्धोनी बनेका के पास में।
0: अच्छा अच्छा, तो राम स्वरूप भैया का हो रहा हो?
1: भैया निंदाई चले साहब और दमखी।
0: अच्छा भैया, पानी खुलगाओ।
1: हाँ गिर तो गाँव मन खुलगा।
0: कल तो भैया अच्छा पानी गिरो।
1: हाँ दिन भर गिरा त्रा साल।
0: हाँ अबे पूरी पूर्ति ना भई हुई है भैया।
1: अबे तो भैया कड़े नहीं खेत में सती भाई धरती।
0: चलो भैया, लेकिन समय समय पे पानी गिरत जा रहा है, फसलें नहीं सूख पाई।
1: हाँ साहब तो सही गिर रहा है।
0: तो फसलें तो वैसे बढ़िया है भैया अबे।
1: हाँ साहब अच्छी है फसलें।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: तो बताओ भैया, आज का फरमाइश है आपकी?
1: काशी राम एहरवाल को लोग भी सुनवा दे बरसो राम भरा धनिया।
0: चलो भैया बिल्कुल, आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर दे हैं।
1: हाँ
0: और अब बारी आ गई अटका की।
1: हाँ साहब बन है तो बताएं।
0: तो भैया सुनो ध्यान से।
1: हाँ
0: कई सोने की वह चीज है, मनो बेचे ना सुनार।
1: हाँ
0: और मोल तो वो को ज्यादा नहीं है।
1: हाँ
0: मनो खूब है वो को भार।
1: जो नहीं बताते साहब
0: कहा है भैया?
1: कथा में है कौन कथा राव कहा
0: कर रो पर गो। चलो भैया कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुनत रहो।
1: हाँ
0: कार्यक्रम के अंत में हम और बते हैं। और अब आपकी फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं काशीराम एहरवार को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: भैया, फोन करें लोक गीत सुने में खूबे खूब स्वागत कर रहे हैं आपको। अपना नाम बता दो।
1: हम रामदीन कुशवाहा बोल रहे सर, ग्राम सरानी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा रामदीन भैया, क्या कर रहे हो आप?
1: जो सब्जी लगा रहा है, खीरा।
0: तो सब्जी में क्या क्या लगाए हो भैया? अभी
1: सब्जी में अभी खीरा लगा रहे और वो टमाटर लग रहे
0: हैं
1: और लौकी, कछू, करेला।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करियो भैया, प्रयास करियो कि इसमें रासायनिक खाद की जगह पे अगर जैविक खाद डालो तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: जी सर।
0: क्या है भैया, जैविक खाद अपन को सस्ती भी पड़ जाता अपने के, अगर पशुपालन हो रहा है तो अपन गोबर खाद भी बना सकते हैं भैया।
1: हाँ,
0: और केंचुआ खाद भी बना सकते हैं भैया, उसे उपज भी ज्यादा मिल जाऊ थे, वो बस स्वास्थ्य के लाने बहुत ही उत्तम।

0: थे। अब भैया हम आपसे पूछ रहे हैं अटका।
1: हाँ सर।
0: अटका कह रहा है कि सोने की बात चीज है, मनो बेचे ने वो सुनार, मोल तो वो को ज्यादा नहीं, मनो खूब है वो को भार।
1: सोने की चीज है,
0: मनो बेचे ने सुनार, मोल तो वो को ज्यादा नहीं, मनो खूब है वो को भार।
1: अच्छा।
0: सब कछुए में लुको है।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: ये अपन की वो तो रोशनी है जैसे बला फलब जला दड्डी है।
0: नहीं नहीं वो वजनदार चीज है, वजनदार।
1: अपनी दौड़ो दिमाग।
0: कोई बात नहीं भैया, तो अब दौड़ा दो लोकगीत हम तक। कौन सा सुनने हैं?
1: लोकगीत सावन गीत सुनवा दो। कौन? अजुद्दी दास कबीर पंथी राखी गीत सुनवा दो।
0: ठीक है भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे अजुद्दी दास कबीर पंथी को गाओ भाव जो राखी गीत।

0: जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार भैया, कुआ बोल रहे हैं अपन?
1: सर ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहे हैं सर।
0: विपिन भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: तो विपिन भैया क्या हो रहा हो अबे?
1: सर अबे तो बस यही सर, खेती के

0: पानी के काम चल रहा है सर। तो अभी मक्का का मैं खाता आपके भी काम चल रहा है, अब तो हालांकि पूरे हो गए हैं।
1: तो विपिन भैया अपने क्षेत्र में पानी कैसे गिर रहा हो?
0: सर पानी अब कल तो सर दिन भर पानी गिरा था, लेकिन सर खेतों से बाहर नहीं निकला। मतलब सच कहें तो सर जैसे ड्रिप सिंचाई होती ना, वही ड्रिप वाली सिंचाई हुई है सर कल दिन भर। तो
1: मतलब जमीन इतनी सूखी हती के ससोक गौ पानी।
0: हाँ सर, मतलब बारिश दिन भर हुई है, लेकिन बारिश हल्की हल्की हुई थी, तो वो बूंदा बांदी ही हुई है, रिमझिम बारिश, बीच में तेज थोड़ा मध्धा, तो ऐसे में जमीन भी प्यासी थी। ये बात भी आप सही कह रहे हैं, और बहुत दिन से पानी नहीं गिरा था।
1: चलो भैया अच्छा है भैया फसलों के लाने। तो बताओ भैया फरमाइश का है आज?
0: जी सर, सावन का गीत सुनना चाह रहे हैं सर, प्रभु सिंह अनुज की आवाज में, यही लोग गीत सुनवा देना सर।
1: चलो भैया आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर दे हैं।
0: जी सर।
1: और अब सुन ले भैया आज को अटका।
0: जी सर।
1: अभी तक भैया कोनो भी श्रोता एक कार्यक्रम में अटका को सही उत्तर नहीं बता पाओ, और आप आखिरी श्रोता हो एक कार्यक्रम के, तो उम्मीद कर रहे हैं भैया कि आप ये अटका को सही उत्तर बता पे हो। तो सुनो ध्यान से भैया।
0: जी।
1: कई सोने की वह चीज है,
0: हाँ?
1: मनो बेचे ना सुनार,
0: हाँ?
1: मोल तो वो को ज्यादा नहीं है, मनो खूब है वो को भार।
0: सर ये बातचीत है सर, बोल जो अपन बोला था बातचीत कर रहे तो नहीं है।
1: हाँ हाँ भैया, बोल इतने भारी कहाँ होत भैया, और बोलों को भैया मोल ज्यादा होते है, मोल एक को ज्यादा नहीं है।
0: अच्छा सर।
1: सोने
0: की है सर, इसलिए हम
1: सोने मतलब की है और अनोखी चीज है भैया, यही से तो सब जने अटक रहे।
0: हाँ का सोने की चीज तो सब मिल जाए सुना रखे, अब सर ऐसी कौन चीज है सुना रखने मिले
1: तो वही तो बात है भैया, ये अटका की खासियत जई है।
0: नींद है सर, नींद।
1: भैया आप लेगा पहुँच गए।
0: रात तो नहीं है सर।
1: नहीं रात ही में नींद लेते हैं भैया सब जने।
0: आखिरी कॉल आ रहे हैं सर, तब मजा कर ही लें पूरे पूरे।
1: सूत काय पे हो भैया?
0: अच्छा पलका सर, खटिया।
1: हाँ।
0: सोने की वो चीज हम कह रहे थे सर कि हम पहुँच तो गए, क्योंकि सोने वाली नींद सर, तो वो बिल्कुल सही कह रहे।
1: चलो भैया बहुत अच्छो लगो आपने अटका को सही उत्तर दो। अब आपकी फरमाइश पे आपके लाने सुनवा रहे हैं प्रभु सिंह अनुज को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: तो जयशेखर भैया, कार्यक्रम के समापन की तरफ अपन आ गए हैं।
1: भैया मनो
0: मनो भैया, आज जो अटका अपन लेके आए थे
1: हाँ
0: वो को सही उत्तर भी अपन को बता के जाने हैं। हालांकि आखिरी के जो श्रोता हते उनने वो को सही उत्तर बताओ।
1: मनो अटका में मजा खूब आओ, यानी खूब ही फंसके रह गए भैया। अरे अपने जो श्रोता थे
0: ऐसी
1: तो,
0: भैया उम्मीद ना आती अपन को, तो कठिन नहीं लग रहा हो तो।
1: हाँ।
0: तो आज जो अटका अपन लेके आए थे कि सोने की वह चीज है मनो बेचे ना सुनार,
1: हाँ
0: मोल तो को ज्यादा नहीं है मनो खूब है वो को भार।
1: भैया बहुत ही अपन को तो पता होता कि सरल जवाब है को खटिया, कहे कि भैया सोबे की चीज है वाह, वो भारी है, वजनदार है, वो सुनार की दुकान पे मिलत नहीं है भैया।
0: बिल्कुल भैया, तो जे को सही उत्तर है तो खटिया या पलंग।
1: भैया ऐसे ही अटका अगर आपके पास हो तो हमारों तक जरूर पहुंचाओ। अटका भेजबे के लाने भैया चिट्ठिया पे आप लिख दो, अटका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर मध्य प्रदेश।
0: और श्रोता अपने अटका हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9770432297। तो ये पे हमें व्हाट्सएप करें, अपनो नाम पता वगैरह जरूर लिख दे। मैं
1: अच्छा राजन भैया का होता है कि अपने ही अटका जो सुने अब जे लिख के अपन को वापस भेज देते हैं।
0: तो ऐसा ना करें भैया।
1: हाँ फिर भैया इसे हम आपको अटका ले नहीं पाऊ थे।
0: तो ऐसे अटका भेजें भैया जो पारंपरिक हों, और उनको उत्तर अपन को जरूर लिख के भेजने हैं समझा के, जिससे हमें भी आपों को समझावे के लाने आसानी रहे। तो अब हो रही है चलबे की बेरा। चलबे के पहले बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में श्रोताओं से फोन पे बातचीत कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी
1: और हम भैया जयशेखर।
0: कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दो तो आदिल खान ने, और कार्यक्रम की प्रस्तुति हती जय शेखर की।
1: और अब दो भैया हम दोइयों को अनुमति।
0: राम राम, राम।

फोन करें, लोकगीत सुनें। अभी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे थे। श्रोताओं, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज शाम 4 बजे फोन करें, लोकगीत सुनें कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी, तो आप हमें फोन लगा सकते हैं। फोन नंबर 240-845 और सागर का एसटीडी कोड 075-82। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं। समय हुआ है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनने का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
0: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू।

साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एक हर बार बहुत बहुत

0: उत्तर है पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
0: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
1: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
0: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
0: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
2: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: जी दादाजी।
4: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
3: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
4: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
6: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
7: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
6: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
8: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
3: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता, ओह मैं कब बीमार पड़ूंगा।
6: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, उसने होमवर्क भी नहीं किया था, स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।

0: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
1: दादी लगता है मुझे बुखार है।
0: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
1: दादी बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
0: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
1: अरे दादी इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
0: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
1: दादी मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
0: अरे बेटा लेकिन स्कूल का क्या होगा?
1: मैंने कहा ना मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
0: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
1: जी दादी।
2: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। हटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
3: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश अब कैसी तबीयत है?
1: जी दादाजी अच्छा नहीं लग रहा है।
3: अरे अरे अरे अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है, अजी सुनती हो?
0: जी।
3: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
0: जी जी अभी लाई। लो बेटा काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
1: ओ ये तो बहुत कड़वी है ये।
0: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
3: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
1: जी दादाजी।
2: दोनों चले गए, सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
3: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
3: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
2: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर।

0: की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सुमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा उफ।
1: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
0: जी दादाजी।
3: चलो चलो, बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
2: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
3: बेटा।
0: जी।
4: सोमेश जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
1: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब।
8: जी सर।
5: अबुआ राज, अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
9: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
1: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की, जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
9: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल

0: आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिदो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
1: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
2: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
3: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
2: ओके, तो तुम कोड़ा हो?
3: जी।
2: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
3: जी, ये मेरी जमीन है।
2: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
3: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
2: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
3: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
2: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
4: जी सर,
2: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
4: जी सर।
2: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
4: जी सर।
2: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
4: जी सर।
3: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो। साहब ऐसा मत करो।
2: चलो हटो।
3: साहब
2: आओ। ए, ऐसे नहीं मानेगा।
3: साहब मत करो। साहब
2: सिपाही।
4: यस सर।
3: साहब
2: इसको हंटर मारो।
4: साहब। जी सर।
3: साहब मत करो। साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब
0: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
1: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
0: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
5: भाई कान्हू।
3: जी भैया।
5: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
3: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
5: क्या हुआ?
3: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
5: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
3: हाँ भैया।
5: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
3: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
5: तो फिर
3: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेज

0: भेजना चाहिए।
1: हाँ ठीक कहा तुमने।
0: हाँ
1: ऐसा ही करेंगे।
0: जी भैया।
2: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
3: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कानू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानू मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
2: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
3: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो अरे हमारी जमीन
5: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
6: सही बोले, सही कहे।
5: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
7: हाँ सही कहा।
5: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
6: तो भैया सही बात
7: कह रहे हैं।
5: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
7: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
5: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
8: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
5: अब करो या बचो।
8: अब करो या बचो।
5: अबुआ राज, अबुआ दिसुम।
8: अबुआ राज, अबुआ दिसुम।
5: अबुआ राज।
2: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
3: क्रांतिकारी

0: सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया।
1: पकड़ो इनको, पकड़ो हमारा सिपाही को मराई से।
0: भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते? युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
2: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
0: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
2: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
0: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार उमंग।
4: अभी श्रोताओं ने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। थोड़ी ही देर में आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे।

इब्राहिम अशक का कलाम आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। मोहब्बत इस एल्बम से इसे लिया भूपिंदर सिंह का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। वाणी जयराम की आवाज में सुनते हैं ये गजल और इसे परवाज एल्बम से हमने लिया है। दानिश बरेलवी ने इसे लिखा, मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

0: शमीम जयपुरी का ये कलाम आप सुन रहे थे। अनूप जलोटा की आवाज में उन्हीं का संगीत भी इसमें आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सैगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सैगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सैगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की।

जाने मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी

निर्णय करेगा। भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजना

0: की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में हम अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया गीत गाता चल फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने, और आवाज आपने सुनी जसपाल सिंह और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से।

0: नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल उन्हीं का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: गोपाल कृष्णा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रविंद्र जैन का गीत और उन्हीं का संगीत, यशदास और हेमलता की आवाजें।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। त्रिशूल फिल्म के इस गीत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, साहिल उद्यानवी के बोल, खयाम की तर्ज़।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

ज्वेल थी। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे

0: यह है विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रोजाना हम एक इबारत पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उस इबारत में ही छुपे होते हैं वो गीतों उनकी

इबारतों के शब्द जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आज की इबारत आपको पहले एक बार पढ़कर सुना दें। हालांकि आपने उसे पढ़ ही लिया है और बहुत सारे शब्द भी आपने बता दिए हैं, फिर भी हमारे जो साथी फेसबुक पेज से नहीं

और एक साथी ने एक कविता लिखी कि चार दिन की है जिंदगी, फिर क्यों इतना अभिमान, आज जो अपना लगता है कल बन जाता अनजान, कुछ पल हंस लो कुछ पल बांट लो अपनों के संग प्यार, क्या पता फिर मिले ना मिले जीवन का ये सुंदर उपहार, न शिकायतों का बोझ रहे न मन में कोई मलाल, जो मिला उसे स्वीकार करें हर पल को करें खुशहाल। वहीं हमारे साथी कहने कि जिंदगी के सफर में सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के संदेश देती भारत का स्वागत है, प्यार बांटते चलो। और हमारे साथी ने कहा कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो। बिल्कुल सही बात ये आपने कही। तो और हमारे एक और साथी कहना है कि भगवान की भक्ति करो, बाकी सब मोह माया है। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा। और अगर आप अब तक फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है तो वहां आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा टाइप कर सकते हैं, देवनागरी में लिखा है ये, और आपको एक नीले बैच के साथ मिल जाएगा हमारा पेज। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसे सिर्फ आपने अपने लिए किया हो, किसी और के बारे में ना सोचा हो।

0: लिए अपना मन मारते हैं, आपका मन ना हो लेकिन वो काम करते हैं। कुछ रिश्तों को इस तरह से निभाते हैं जब बिल्कुल भी मन ना हो उन्हें निभाने का, या दूसरी तरफ से कोई भी कोशिशें नहीं दिख रही हूँ। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि किसी का दिल न दुखाएं, तो ये तो सही है, सही है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि सबको परेशान करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसी को रास्ते से हटाना नहीं बल्कि सबका अच्छा करते हुए बढ़ें, तो इसमें क्या खराबी है। हाँ, अगर बिना मतलब कोई परेशान करे तो फिर इसको छोड़ना सही है, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन हम तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि आप किसी का दिल दुखाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना दिल ना दुखाएं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और ज़रूरी नहीं कि आप सभी से सिर्फ मुस्कुराकर मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचें। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे मिलता हो लेकिन आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए ही आप उनके साथ बने रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं कि भाई निभाना तो है ही। तो ये निभाते रहना कितना सही है कितना गलत, इस पर कर रहे हैं हम आज बात। क्योंकि अगर है सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी तो क्यों ना उसे हम अपने लिए जिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वे दूसरों को हर हाल में खुश रखने की प्रवृत्ति के मानसिक दबाव पर ये एक सटीक कटाक्ष है। अक्सर 4 दिन की जिंदगी मुहावरे का उपयोग समझौता करने और चुप रहने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ इसी मुहावरे का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज के अधिकार को सिद्ध करने के लिए किया गया है। और हमारे साथी कहते हैं कि आज का गद्यांश जीवन के यथार्थ स्वाभिमान और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी यदि 4 दिनों की है, ये वाक्य सीधे तौर पर एक अर्थ दे रहा है कि जिंदगी की नश्वरता का बोध है। अस्तित्ववाद कहता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए मनुष्य को बिना कोई मुखौटा लगाए अपने अस्तित्व के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को पहचान कर जिंदगी को जीना चाहिए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान का अर्थ अहम प्रेम नहीं बल्कि अपनी आत्मा के स्वरों को सर्वोपरि रखना है, जिससे आत्म सम्मान और विवेक जिंदगी का आधार बन जाए। सभी को प्यार करो यानी सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत को अपनाया जाए। हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि आज की इबारत में आम आदमी का, उसके वर्तन का और समाज मन का सही चेहरा उभर रहा है। रूढ़ियों और अपेक्षाओं के नीचे दबे सर्वसाधारण आदमियों के सामने खुद के लिए जीना कब सीखोगे, ऐसा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अभिमान यानी आत्म सम्मान और गरिमा की रक्षा करते करते स्वाभिमान रखना यानी खुद को विनम्र और आत्मानंद के लिए मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये भी बात है कि क्या हम दूसरों की मर्जी के अनुसार ही सारे काम करते हैं। तो ये भी आप हमें बताइए कि अगर एक दिन आपको ऐसा पता चले कि आज आपको किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा, या ये नहीं कहा जाएगा कि इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस खास जगह पर हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बंदिशें एक दिन के लिए भी आपसे हट जाएं, या आपके मन की जो ये दुनियादारी है वो आपसे हट जाए, तो कौन सा काम आप करेंगे, ये हमें बताइए। और तब तक सुनाते हैं आपको एक ऐसा ही गीत जो आपको काम इस तरह का अपने मन का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए, किस पर फिल्माया गया है ये भी बताइए।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,

फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और कभी कभी आह निकल जाती है जब हम दूसरों के लिए ही जीते जाते हैं। क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के

0: रंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। शमी कपूर इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल अपने मन से आपने किया हो। साथ ही ये भी बताइए कि आज जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए सब रूठ गए हों, सबसे बगावत करके कोई काम आपने किया हो तो भी हमें बताइए। और हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपना जीवन यापन करने का एक हुनर अपने लिए किया है और मेरा जीवन अच्छे से मैं चलाता हूँ उससे। और हमारे एक साथी कहती हैं कि चार दिन की जिंदगी में सबको खुश रखते चलो ये कहते हैं सभी, लेकिन ये नहीं कोई पूछता कि इस कोशिश में खुद को कितना खो दिया। इस छोटी सी जिंदगी में दूसरों को रिझाने के लिए नकली मुस्कान उड़ने से बेहतर कि हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून दे। झुकना वहां ठीक है जहां रिश्ते मायने रखते हों, पर अपने आत्मसम्मान का सौदा करके किसी के सामने गिरना खुद के साथ अन्याय है। ईश्वर ने हमें किसी के सांचे में ढलने के लिए नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है, इसलिए झूठे मुखौटों को उतारिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी चुनी हुई राह पर आगे बढ़िए। हमारी कौर साथी ने कविता लिख भेजी कि वक्त मुट्ठी में रखी रेत सा फिसलता रहता है और हम हैं कि उसे रिश्तों ख्वाहिशों और फर्जों में बांधते रहते हैं। मन की सुन लेना भी जरूरी है मगर किसी अपने की खामोशी पढ़ लेना भी अपने रास्ते पर चलना आजादी है और चलते हुए किसी का हाथ न छूटे शायद यही इंसानियत है। इसलिए इन चंद दिनों को न मुखौटा बनाइए न शिकायत, बस इतना कीजिए कि जो बनना चाहते थे थोड़ा सा बन जाएं, जो अपने थे उन्हें थोड़ा सा अपना कह जाएं, फिर जब शाम उतरेगी जिंदगी की तो अफसोस कम होंगे और यादें शायद थोड़ी ज्यादा। हमारे एक साथी का कहना है कि चल अकेला ये गीत भी सुन सकते हैं क्या आज। हालांकि आज की थीम पर ये गीत तो बिल्कुल भी नहीं जमता क्योंकि अकेले चलने की बात नहीं हो रही है, बात आप सबके साथ रहकर भी अपने मन की कुछ कर सकते हैं इसकी हो रही है। और साथ ही ये शब्द भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत। आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपके लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपके लिस्ट से इसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपके लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं, अपने मन को थोड़ा

थोड़ा सा नरम और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लीजिए, अब अपने लीजिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं, और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका

होता है। संक्षेप में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है, उम्र दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही हैं कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का जो हमने बिल्कुल नहीं किया, हम दूसरों के बारे में सोचते रहे। कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएं थी वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे एक साथी कहने की लता जी की आवाज का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी, जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल के सुनते हैं अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें न खुद दुखी हो, ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे एक साथी ने दी है, नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं संदेश कि अपने मन की जीना बहुत जरूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं, आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत जिसमें बात है कुछ ऐसी ही। और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इसमें आपने सुना किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया, और अब अपना सेकंड फेस यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं। और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें, और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निके निके से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है वो कर लीजिए। भाई इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटी सा एक ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियां, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। भाई ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए, लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शम्मी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन, क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज की एक कसक मन में रह गई है तो वो क्या है, हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन से फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विद्या सिन्हा इसमें नजर आती है। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज के भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रही कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था, स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले तो पहले अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नज़र में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं, हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के जद्दोजहद